0: समुदाय को लागी सामुदायिक रेडियो जलजला एफएम 96.4 मेगाहर्ज
1: मोबाइल डाटा सर्फिंग में असाध्य कम खर्चिलो छिनछिन को खबर अब थाहाखबर.com मा
2: विचार तीतो पनि मिठो पनि विषय राजनीतिक पनि गैर राजनीतिक अतिथि परिचित पनि अपरिचित पनि सरोकार सीधा तपाईसँग प्रत्यक्ष पनि अप्रत्यक्ष पनि The News Plus
1: Radio Thaha Sanchar 99.4 Sahi Thaha Sanchar Network ka Partner Station Harubata Ekai Shaat Pratyek Din Bihana 6:30 Baje Nishpaksha Sakriyata Ko Abhyas

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: द न्यूज प्लस।

श्रीगणेशाय नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ देव सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसित सरसन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरेटे हरि हिरणमय वपुर धृत शंख चक्र हरि हिरणमय वपुर धृत शंख चक्र ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरंतकारी प्राणो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु।

प्राकृतिक चिकित्सालय दीर्घायु अस्पताल प्राली तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही फोन नम्बर 071-562-459 र 98-645-78-232।

0: समुदाय को लागि सामुदायिक रेडियो जलजला एफएम 94.4 मेगाहर्ज
1: अमेरिकन लाइसेन्स अन्तर्गत उत्पादित अरू भन्दा 25% बढी प्रेसर वहन गर्न सक्ने क्षमताका साथ 50 वर्ष भन्दा बढी विश्वभरि रुचाइएको एनएफएफ अमेरिकाद्वारा प्रमाणित फ्लोगार्ड ब्रान्ड साथै मार्बलका यूपीभीसी प्रोडक्टहरू लिड फ्री यूवी रेसिस्टेन्ट र हाई इम्प्याक्ट स्ट्रेन्थ भएको
2: सुरक्षा घरको साथ जीवन
3: पानी जीवन को आधार हो तर स्वच्छ पानी स्वस्थ जीवन को आधार हिमालय ऑन टॉप लामटांग हिमाल को स्वच्छ प्राकृतिक पानी अब तपाई को हाथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर को अत्याधुनिक प्रविधि प्रशोधित ऑन टॉप ब्रांड का पानी 500 देखि 900 मिलीलीटर का आकर्षक पेट बोतल में उपलब्ध छ। थप जानकारी का लागि हिमालय स्प्रिंग वाटर प्राली नया बानेश्वर काठमांडू फोन 4781-4780-7624 वा हिमालयवाटर.com.np लॉगिन करनु होस।